0: कौन सा? इधर है उधर है, चार्टिगज स्टेशन के लिए।
1: फास्ट स्लो
0: कौन सा भी चलेगा?
1: हाँ ये ये ये वाला 5 नंबर, नीचे नीचे लेफ्ट वाला।